सह गुरु रामदास सच्चे पातशाह सोडी सुल्तान मालिक दी महान वडियाई करदे ने हे प्रभु तेरे केड़े केड़े गुणा दा इजहार करा तू गुणा दा मुजस्मा है गुणा दा

दुख ना होवे, अंदोह ना होवे, चिंता ना होवे, माल कठा करके सामण दी फिकर ना होवे, किसी दा देना ना होवे, ओ लोग बड़े सोहने होंदे। ध्यान देना, साहब कहंदे सेई सुंदर सोहने साध संग जिन बहने, जिन्हां नूं गुरु की संगत च बहना आ गया उन्हां नाल सोहना होर कोई नहीं हो सकता। कई बार ऐसा तुसां वेख्या अपने आले दुआले विच, छोटा जिहा बच्चा है, मां चुम चुम के कमली हो जांदी, कहंदी मेरा लाल, मेरा सोहना, मेरा चन्न। एक दिन ऐसा होंदा है मुंडा जवान हो जांदा, मुंडा होर भी सोहना हो गया, सोहना जवान उठिया, चमड़ी ओवें अगे नाल भी सोहनी चिट्टी है, नक्श भी निखर आए ने, बस्तर भी सोहने पाए ने। छोटे होंदे तां थोड़ा बहुत गंदा भी हो जांदा सी, हुण मैल भी नेड़े नहीं लगण देंदा, लेकिन एक दिन हुंदा है मां कहंदी है निज होने इहदे नाल तां ना जमदो साडे घर। क्यों कहंदी ऐसा? क्योंकि उस मुंडे की करतूत विगड़ गई, हुण ओह सोहना नहीं लगदा, प्यार करन नूं जी नहीं करदा, सुपन पूरा है, बाहरों सुपन पूरा है, मगर मां नूं चंगा इस करके नहीं लगदा क्योंकि ओहदे अंदर दा सुपन गवाच गया। बचपन च अंदर भी सुपन कायम सी, वड्डे हुंदियां खराबियां करके अंदरों कोझा हो गई। और ध्यान देना, बंदा वेखण नूं किड्डा सोहना ते किड्डे सोहने बस्तर पाए हो, जे ओहदियां अखां च काम है ना, ते अणजाण बच्ची कहंदी है मां इस बंदे दी अख ठीक नहीं, ये वेखदा होर तरह। जे किसे दी बंदे दी अखां विच लोभ होवे ना, ते बंदा चीजा अगां पिछा रख लैंदा, कहंदा कि इस बंदे दी अख दा भरोसा कोई नहीं, कोई चुक नाल जा, क्योंकि लोभी अख वाला बंदा इहदी अख विच लालच टपकदा है। ते तुहाडे आले दुआले जिन्ने बंदे हिक फला के छाती तान के हंकार नाल तुरदे ने, या किसे दी फतेह दा उत्तर नहीं देंदे, तुहानूं कोई चंगा लगा अजे तक? जेड़ा बंदा फतेह बुलाउंदा ही ना होवे, फतेह दा उत्तर ना देंदा होवे, हंकारिया होया, ओह बंदा तुहानूं कदे चंगा नहीं लग सकदा। काम क्रोध लोभ मोह हंकार च ग्रसिया बंदा तां अपने आप नूं चंगा नहीं लगदा, किसे नूं की चंगा लगेगा, निरंकार नूं की चंगा लगेगा, गुरु नानक नूं कौन चंगा लगदा? साहिब कहिंदे ने, आपां सारी वार च रोज पढ़दे, भगत तेरे मन भावदे, मेरे वाहिगुरु जी तेरे भगत जिहड़े ने तेरे मन नूं भी चंगे लगदे। क्यों चंगे लगदे ने? दर सोहण कीरत गावदे, ओह तेरे दर ते बैठ के तेरा जस गाउंदे ने ते सोहणे हो जांदे। तूं बहुत सोहणा है, अत प्रीतम मन मोहना घट सोहना, तेरा दरबार भी बहुत सोहना है, ते जेड़े तेरे दरबार नाल जुड़ गए ओ किवें ना सोहने होणगे। कहिंदे ने लोग, फिजियोलॉजिस्ट कहिंदे ने, मिट्टी दा भी असर हुंदा है। तुसी देखना, कई बारी तुसां देखिया होवेगा, कुछ जानवर ऐसे हुंदे ने जेड़े रुखां ते पक्के ही रहिंदे ने, जेहो जिहा रुख ते रहिंदे होण ओहो जिहा उहदे खंभ हो जांदे ने, ओहो जिहा रंग हो जांदा है। कलर दे सप दा रंग हो रहा है, घा विच रहण वाले सप दा रंग हरा है, काली मिट्टी च रहण वाले नागां दे रंग सुरमई ते काले ने। क्यों? मिट्टी भी अपना रंग चढ़ाउंदी, घा भी अपना रंग चढ़ाउंदा है। बर्फा दे इलाकियां च रहण वाले बंदे चिट्टे ने, इक्वेटर दे नेड़े रहण वाले लोग जिहड़े ने ओह काले काले, क्योंकि काली मिट्टी दे च रहिंदे। की कारण है? मिट्टी भी अपना रंग चढ़ाउंदी है, ते बंदा संगत च बह जाए संगत दा रंग ना चढ़ेगा, गुरु की हजूरी च बैठ जाए गुरु का रंग ना चढ़ेगा, जिसने गुरु नानक नाल जुड़ के बैठेगा गुरु नानक का रंग चढ़ेगा, गरीबी आवेगी, निम्रता आवेगी, हंकार मिट जाएगा। जिथे काम रहिंदा सी उथे राम रहेगा, जिथे क्रोध रहिंदा सी क्रोध निकल जाएगा, उथे बोध आ जाएगा, सोझी आ जाएगी, जिथे लब वसदा सी लोभ वसदा सी उथे रब वसेगा, जिथे मोह वसदा सी उथे मोहन वसेगा, जिथे हंकार रहिंदा सी उथे निरंकार वसेगा, ते बंदा बदलना जाएगा, बंदा होर दा होर हो जाएगा। तुसां वेखिया कई महापुरुष जिहड़े भगती ते सिमरन वाले ने, शकलों कोई बहुते सोहणे ने, लेकिन आखीदा बाबा जी दे दर्शन करने। क्यों? की दर्शनां च की पिया है? काला रंग है मुंह ते, माता दे दी दाग ने, मोटी सारी ऐनक लगी हुई है। बाबे दा वेखण वाला की है? उस बाबे दा जीवन वेखण वाला, ओहदे दर्शन करके चित प्रसन्न हुंदा, क्योंकि ओ बंदा रविदास दी नगरी दे वसण वाला है, जिथे बेगम पुरा है, सुख महल जाके ऊच द्वारे, बंदा बदल जांदा है। उस अवस्था च जाके मनुख बाहरों भावे कुछ नजर आवे, अंदरों इन्ना पवित्र ते स्वच्छ हो जांदा है, गुरु नानक नूं चंगा लगदा है, प्रभु नूं चंगा लगदा है, संसार नूं चंगा लगदा है, अपने आपे नूं चंगा लगदा है। धन गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह संगत सहित बैठे सन, कुछ प्यारियां प्यारियां विचारां दे नाल सिमरन अभ्यास दा समा सी, सारे जुड़ के नेत्र बंद करके चौंकड़े मार के बैठे, साहिब आप भी जुड़ के बैठे, अचानक थोड़ी जी खलबली हो गई,

0: तेरा ठा भी सोना, तेरा रूप भी सोना, तेरे भगत भी सोने। सुंदर स्वामी धाम, मालक दा दर सोना है। एक गल दा ख्याल रखना है, मालक दा दर केड़ा है। सो दर के हा, सो दर के हा, जित दर वसे कवन दर कही है। दरा भीतर दर कवन लहे, ओ केड़ा दर है। जिथे भी साध जन बैठ के उन्हें चेते कर देने, उथे ही
1: भीतर दर

मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, नेचल होए ना उन मन लिवलाइए। अंग अंग भंग रंग रूप।

मेरे हृदय च कपट है ते तू मेरे कपट नू जानना। मैं भी कुछ जानना, मैं सिर्फ इना जानना कि तेन बख्शना भी आउंदा। जे तू साडे दिल दियां जानना है ते तेन जान के फिर बख्शना भी आउंदा। वेख के साडे बारे जान के फिर खिमा कर देन दी भी गल तेरी है, ते जे साडे वल्लों गिणिया जावे ते फिर तां बड़ा मुश्किल है। जे मालिक तेनू प्रवान करन वास्ते, तेनू प्रवान होन वास्ते, तेनू प्राप्त करन वास्ते मैं अपने वल वेखा ना, मेरे कोल रूप है ना, मेरे कोल अखां ने ना, अखां विच ओह नजर है जिहड़ी तेनू वेख ते माण सके, ना मेरे कोल रूप है जिहड़ा तेनू दिखाया जा सके, ना मेरे कोल ज़बान है जिहदे विचों मिठे मिठे बचना नाल मैं तेनू रिझा सका। बल्कि मेरी ता सुरत दे, मेरी करनी दे हाथ पैर भी सिद्धे नहीं। कुलहीन कह लो, गुणहीन कह लो, ते जिहदी कुल भी कोई ना होवे, जिहदा गुण भी कोई ना होवे, ओहदी शोभा भी कादी। ऐसी अवस्था च मैं तेनू प्राप्त किवें होवां, तेनू प्रवान किवें होवां, तेरे नेड़े किवें होवां, कोई चारा नहीं। हां, जद ए जानना कि तेरा बिरध बख्श लैण वाला है, तेरा सुभा तेरा नेम बख्श लैण दा, उदों आके भरोसा थोड़ा हो जांदा है।

साहिब अस्त फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त। ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन

बाबा बंदा सिंह बहादुर ने जारी किया। उस सिक्के ते बाबा बंदा सिंह बहादुर ने ये लफज लिखाए जेड़े के इतिहासिक लफज हन। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने नाम ते सिक्का नहीं चलाया बल्कि धन गुरु नानक साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के नाम ते ए सिक्का चलाया।

जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिस दा शिंगार ए पागां वाला तखत है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहे हैं। इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारियां नू सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला सिक्का।

गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जिहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव दा जन्म जम्मू अते कश्मीर दी एक रियासत

काल उसने सिर झुका दिता अते इस तू बाद धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जिन्ना ने बड़े प्यार नाल माधो दास नूं देखिया मस्ती रतियां नजरां वाले गोरे रंग वाले लम्मियां बाहां वाले गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधो दास वाल देख के मुस्कुरा रहे सन।

मिठी प्यारी अति मुस्कुरांदी आवाज विच आखिया, मैं गोबिंद सिंह हां। बैरागी ने फटिया फटिया अखां नाल उन्हां वल तकिया जिन्हां नूं तकदिया प्यास नहीं सी लेंदी। उसका शरीर कंब रहा सी, फुल कंब रहे सन, आवाज कंब रही सी आवाज। ओली जी कहन लगा, तुसी गुरु गोबिंद सिंह? गुरु जी हस पे अते उसके तप द्वारा कठोर बने हुए शरीर नूं इउं तकिया जिवें उन्हां दियां अखां दो हाथ होण, अते उस नूं घुट के अपने सीने नाल ला लैण लई उतावली हो। अते तीर जे बोले उस माधोदास बैरागी नूं, तू कौन है? ता माधोदास बैरागी चरणा नूं चुमदा होया कहन लगा, मैं तुहाडा बंदा गुरु जी, मैं तुहाडा बंदा। मैं तुहाडी बड़ी उड़ीक कीती, बड़ा ढूंढिया, बड़ा लभिया, अज तुसी मिले, मैनू शांति नसीब हुई, मेरी मंजिल मैनू मिल गई। गुरु जी ने माधोदास नूं उठा के अपने कोल बिठाया, प्यार नाल कहा, जानदे हुए भी पुछदे ने, तू बैरागी क्यों बने? तां माधोदास ने अपनी कहानी सुनाई। एक हिरनी दा मैं शिकार कीता, वह मरी, ओदे बच्चे भी तड़प तड़प के मर गए, तां मैं वैरागी हो गया। तां गुरु साहिब ने कहा,

जोरावर सिंह फतेह सिंह जिन्हां दी उम्र 6 साल 7 साल दे लगभग उन्हां नूं जिउंदियां नूं नीहां विच चिण दिता गया। ये सारियां गल्लां माधो दास ने सुनिया, ओदियां अखां विचों अथरू वह तुरे, पर गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज बिल्कुल शांत बैठे ने। इतिहास दसदा है कि माधो दास ने बैराग अते जंगल नूं हुण छड्ड देण दा फैसला कीता अते प्रार्थना कीती

महाराज ने माधोदास बैरागी नू अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नू गुरबख्श

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारिआं नूं बुलाया है पर ना मैनूं बुलाया ना तुहानूं बुलाया, परंतु वह मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहनी। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिदा, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जान की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नूं कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर कहा ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरो वीरभद्र वगैरा पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। तां उसे वक्त उन्होंने दशक प्रजापति का सिर वढ़ के यज्ञ की अग्नि विच सुट दिता, हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग यूं नसन लग पए जिउ प्रचंड महातांडव नचदी हुई परलो आ गई होवे। इसे तरह यह कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरो नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा किया अपने अलेटां विच।

जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है तां सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद

धुन मिट गई। संसार ते पापां दी धुंद छाई हुई सी, कोई कर्म कांडा विच पिया, कोई जोगियां दे पिछे पिया, कोई सिद्धां दे मगर लगिया है। परमेश्वर दा नाम सारियां नू विसर गया सी, पाप विच रुझिया।

चारे पासे सुगंधी फैल गई है। मेरा मन कहिंदा ए कोई साधारण बालक नहीं है, ए ता कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है। साथ संगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता। मेहता कालू ने समा लिख लिया और जदो सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक होया ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो। पंडित हरदयाल उठ के बैठा, मेहता जी नु बिठाया कोल, कालू जी नु मेहता कालू नु कोल बिठाया, पुछया कितने बजे होया बालक, आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच। जदो पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदो लिखन लगा ते कलम रुक गई। कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां ता मेनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा, क्योंकि और नहीं लिखदा ता मैं ए वेखदा के मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई। मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं, ए ता परमात्मा दा रूप है। सत्संगत बोलो श्री ए प्रभु दा रूप है। मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नु इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया। हुण चारे पासे माता तृप्ता नु मेहता कालू नु वधाइयां मिल रहियां हैं कि आज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है। प्यारी साध संगत आ बालक पता है कौन है? ए बालक आप नारायण कला तार जग में परवरे हो, आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा।

खेत विच वड़ गई हैं और जाके सारी खेती नू खा लिया और कुछ पैरां तले खराब कर दिता। साहब जी अडोल समाधि विच बैठे जदों खेत दा मालक आया की वेख्या एक बालक बैठा है समाध धार के ते गाइयां।

तेरा आख्या ते फिर जेड़ा आउंदा गया उदी चोली भरी गई ते कहंदे गए तेरा तेरा तेरा हर संगत बोलो श्री तेरा ही तेरा करके चोलियां भर रहे बाला लिया लिया के वस्तुआं दे जाऊंदा ते गुरु नानक सच्चा पातशाह चोलियां भरी जांदा किसे ने जाके विद्रोहियां ने शिकायत कर दी थी दौलत खान तेरा मोदी खाना गुरु नानक लुटा रहा है जाके उदे कोलो हिसाब किताब ले नहीं तो लखां दा घाटा तेनू हो जावेगा कोई लोड़वंद गरीब गुरबा गुरु नानक कोल आ जांदा है चोली विछांदा है गुरु नानक तेरा ही करके विच पा देंदा है ते कोई पैसे नहीं लेंदा किसे कोल जाके गुरु नानक कोलो हिसाब ले दौलत खान जदों आया कहन लगा गुरु नानक मैं तेरे नाल हिसाब करने कितने दिन हो गए तेनू काम कर दिया पहले हिसाब ला लईए के की नफा होया की नुकसान होया ते अगे फिर काम चलावांगे साहब जी कहन लगे बेशक हिसाब कर लो भाई कर लो हिसाब ते जदों सारा हिसाब होया इतिहास विच लिखिया के दौलत खान जदों सारा माल अंदरों गिणिया तोलिया ते की हिसाब विच लिख लिया हिसाब कीता ते 735 रुपये गुरु नानक दे वध निकल गए दौलत खान बड़ा हैरान होया कहन लगा मैं सुनिया के तू सारिया नू रब दे नां ते देई जांदा है ते फिर तेरे कोल ए पैसा नफे विच कित्थों निकल आया गुरु नानक सच्चे पातशाह कहन लगे दौलत खान जो रब दे रस्ते ते खर्च कर

हो गई, बाहर ही नहीं निकल रहा। ए भाई जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा, नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गया। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी, भरोसे वाली सी, कहन लगी इवे ना आखो, मेरा नानक संसार विच डूबन वास्ते नहीं आया, ओ तां कईयां नूं तारन वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा, ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा, कम होवेगा, किसे कम नूं गया होवेगा, ओ जरूर आवेगा। और समा पा के जदो निरंकार दे कोलों उपदेश लै के गुरु नानक सच्चे पातशाह वेई विचों निकले, इत्थे सारे उदास बैठे हन के गुरु नानक वेई विच डूब गया, लेकिन बेबे नानकी नूं पता है मेरा वीर संसार नूं तारन वाला है, वो कदे डूब नहीं सकदा। ताई सारे उदास बैठे ते बुआ खड़किया, आवाज आई बेबे करतार चित आवे, उठी भजी बेबे नानकी, मेरा वीर आ गया। जां बुआ खोलिया, गुरु नानक सच्चे पातशाह सामने, बेबे नानक

की जुगत गुरु के पुत्र हो गए ते गुरु के पुत्र सत्संगी जिथे मिलके बैठ के प्रभु जस करदे ने जेड़ा आके उन्हां सत्संगियां च रल गया गुरु पुत्रां च रल गया प्यार दे रंग च रस्ता होया प्रभु जस कर रहे है प्रभु जस मान रहे है और यह धर्म का मार्ग धरती दे धरन वाले निरंकार प्रभु ने गुरु दे रूप च आप धारण किया आप बनाया इस मार्ग ते जेड़े चलते ने धर्म पंथ तरयो धरनी तर आप जेड़े इस मार्ग ते चलते ने रहे लिव तार न तावत है भटकना मुक जाती है लिव जुड़ जाती है जीवन का आनंद लेंदे ने भगत भट्ट मथुरा जी कहंदे ने कहंदे ने वड्डे भागां वाले ने लोग मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छित ही फल पावत है उन्हां दे मन दी इच्छा प्रभु प्यार नूं प्राप्त करना और ये फल प्राप्त कर दें ते कहंदे ने उन्हां नूं फिर रब दे सुत सूरज दे पुत्र धर्मराज दा डर नहीं रहिंदा रब के सुत को तिन त्रास कहां जो चरण गुरु चित लावत है जेड़े गुरु चरणां नाल मन जोड़ लैंदे ने उन्हां नूं नरक दा डर नहीं जम दा डर नहीं ते ना ही किसे सुरग दी इच्छा रह जांदी गुरु चरणां दे प्यार च गड़ूंद होए आनंद लैंदे ने रंग च रते होए

मगर सारे कार्य स्वारण वाला समर्थ ओ परिपूर्ण परमात्मा है। ते गुरसिख ए यकीन करदा है कि मैं मनुख दे चरना कमला तो की लेना है, मनुख दी ओट करके की लेना है, क्यों ना मैं उस परमेश्वर दी ओट लवां।

0: You are listening to CCAT Radio.
1: कुछ समय पहले लुधियाने तो बीबी अमरजीत कौर हो रही शब्द कीर्तन वाले साढ़े को ननकाना साहब तशरीफ ले आए उन्होंने दिती हुई कविता पेश है पटने विच चन अज चढ़िया

एक जंगल समान है जिस दे दूर दूर ता बड़ी भयानक अग लगी हुई है। जो अग्नि वड़े वड़े रुखां नूं पले हुए रुखां नूं सारदी तुरी जांदी है। ते जे पिछे वेखिए ता कोमल बूटे होर हरे होंदे आउंदे हैं। अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना सब में जोत जोत है सोए एक पासे संसार नूं समाप्त कर रहा है एक पासे संसार नूं जन्म दे रहे है। उस दी जोत सदा परिपूर्ण है जिस तरह अनेकां घड़िया दे विच जल हुंदा है ते सब घड़िया विचों आकाश मंडल नजर आ रहा है। घड़े जल दे परे हुंदे हन ते उस जल विचों आकाश मंडल नजर आ रहा हुंदा है। ते जे कोई कड़ा टूट जावे ता आकाश नहीं मरदा केवल ए शरीर दा ठीकरा ही टूटदा है। इसे तरह ही संसार ते जो जीव आउंदा है साहब कहंदे हन कौन कहंदा कि फलाना मर गया है नहीं कौन मुआ रे कौन मुआ ओ ता पमने में पवन समाया पंज तत्तां दा इंसान बनाया ओ पंजे तत्त जदों वक हो जांदे हन इंसान दी मृत्यु हो जांदी है। साहब कहंदे हन पमने में पवन समाया ज्योति में ज्योत रल जाया माटी माटी होई एक रोमन हारे की कमन टेक कौन हुआ रे कौन हुआ। ए अकाल पुरख वाहिगुरु दी रचना है। ए जग ए सारा संसार उस ईश्वर दी कोठड़ी है रचना है। साहब बाणी विच इस प्रकार दस रहे हैं।

अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा कौन भले को मंदे लोगा परम ना भूलो भाई खालक खलक

शब्द गुर पीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा, बिन शब्दे जग भौरन गुर।

मुर्गे चढ़ने ऊपर मेरे माथे माई माई चरण गुर मीठे माई चरण गुर मीठे वड़े भाग देवे परमेश्वर वड़े भाग देवे परमेश्वर और पर

कौन से सरा संसार से बुद्ध तदपन उपमा सुख या मैं रंजन मिथ्या भाखी पार ब्रह्म गुरु नानक साखी रोम रोम जे रसना पावो तदप खालसा जस तै गाऊ रोम रोम जे रसना पावो तदप खालसा जस तै गाऊ हो खालसे का सबके।